0: कभी अकबर वाले बारिश क्यों ना कह उठाई।
1: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जी दीआं कालां लाऊंगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां।

0: बबी जी मेरी आवाज आज तो भाई ड्रामा ही हो रहा कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पग दोस्तों साडा ना कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा आपस विच ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: दूं और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

किसी के हुनर में मेले में अकेले तेरी बाजार सर में कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना यमला पगला दीवाना।

पसीना छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना प्रेम का राग पुराना पुराना पुराना मैं जैसे यमला अगला दीवाना।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM टू 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट से दोस्त दर्शन सिंह खक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तो सत श्री अकाल नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज एक्चुअली ए प्रोग्राम 7 तो लेके 9 बजे तक हुंदा टाइम चेंज हो गया सी रिकॉर्डिंग थोड़ी जी 6 बजे वाली है सो बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो मच लो कुछ गीत सुनदे हैं जी पहला गीत आपां सुनदे हैं बहुत प्यारा जिहा गीत है हिम्मत संधू दा ते बाजी दिल दी ते फिर आपां अगले गीत दे नाल इस चालू करांगे जी
2: Let me through.

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और एक गीत जड़ा है मैं आप जी की नजर कर रही हूं विशेष करके।
0: थैंक यू जी।
1: जड़ा हूं मैं सुना लगी हूं।
0: हां जी।

0: कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर
1: उधर
0: ये खोई खोई नजर कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर उधर तो एक जल सुलगता हुआ है वीराना मगर इधर तो बहारों में बाग जलते हैं।
1: बहुत खूब बहुत
0: जो अश्क पी भी लिए जो होंठ सी भी लिए जो तुम्हारी राह चले कुछ अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो कुछ आज अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
1: वाह वाह खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
0: वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये फिल्म नूर जहारा फिल्म
1: जहारा
0: हाँ जी
1: अच्छा।
0: और मदन मोहन जी का म्यूजिक हैगा जिन्हें मैं सब तो पहले गीत सुनाया था आपकी नजरों ने।
1: वंडरफुल जी मतलब की फिल्म इंडस्ट्री क्या बातें ने पर जड़िया मेनू खास करके जेडे 90 दे 70 दे जे इथे जे दे गाने ना 30 साल दे विच विच जेडे हन कमाल दे गाने ए नहीं भी आज भी चलो कोई कोई गाना वधिया मेनू लगदा लेकिन पिछले सारे ही सोहने लगदे ने गाने
0: पिछले सर तुसी गीत अगर तुहानू नींद नहीं आ रही ना पुराने गीत तुसी लगा के सो जाओ तो तुहानू इवें लगेगा जिवें ओ तुहाडे लई लिखे गए ने।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जज्बात ने।
1: हाँ जी हाँ जी नो डाउट
0: कोई भी गीत तुसी सुनोगे हर व्यक्ति नु ए लगदा ए मेरे लिए लिखा गया ए मेरे जज्बात ने।
1: जी जी आराधना जी बहुत बहुत मेहरबानी तुसी इन्निया सोहनिया रौनकां लाईयां गाने सुनाए ते मैं तुहाडे नाम एक शेयर करांगा
0: जी
1: ए नज़म किसे शायर दी है अल्फाज मेरे ही मेरे ने।
0: क्या बात है
1: तुसी कह रहे हो ना कि जेड़े तुसी सुनोगे तो एवं लगेगा कि तरह मेरे वास्ते गीत लिखा गया है।
0: जी हाँ जी
1: ए नज़म किसे शायर दी है अल्फाज मेरे ही मेरे ने दुहाई मेरी ही मेरी है जख्म तेरे ही तेरे ने।
0: वाह भाई वाह क्या बात है जिंदे रहो।
1: दुहाई मेरी ही मेरी है जख्म तेरे ही तेरे ने ए हट हुसन दी तेरी है मेरे फेरे ही फेरे ने।
0: वाह भाई वाह क्या बात है सर
1: ए हट हुसन दी तेरी है मेरे फेरे ही फेरे ने बेरुखी दी बारिश सजना बंद कर दे इस जग विच दुख बथेरे ने बेरुखी दी बारिश बंद कर दे इस ऑलरेडी दुख बड़े ने उतो तुही भी दुख देन दे हो
0: आहो नहीं मैं तो आप जी नु एक कहांगी कि हुन आप जी देखियो तो खाली जदो हुन ते एक सोहना जिहा पैग बना लियो
1: नहीं ये तू अर्ली है जी अर्ली है साउंड लगा साउंड लगे
0: अच्छा
1: इस वे मैडम जी 5 बजे ने साढ़े जर्मन दे विच
0: अच्छा जी
1: धुप लगी है धुप लगी है
0: ओके ओके अच्छा जी
1: अजे मैं अपने गार्डन च काम करना बूटे लाने ने बहुत सोहने फुल
0: अच्छा जी
1: हां जी हां जी
0: गुड गुड वेरी गुड
1: ते मेरिया शुभ इच्छावां तुहाडे नाल तंदुरुस्त रहो जीवदे वसदे रहो।
0: थैंक यू सो मच सर और सारे प्रवास रेडियो के श्रोतावां नूं शाम दी सत श्री अकाल वेरी वेरी गुड इवनिंग।
1: थैंक यू जी थैंक यू
0: और बस आपा प्रवास रेडियो नाल इसे तरह प्यार साडी मोहब्बत
1: बनी रहे। बहुत बहुत मेहरबानी
0: बाजवा साहब नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी साडे वल्लों तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल साडा भी प्यार उन्ना ही बरकरार बल्कि दहां नाल जर्ब दे के ठीक है
0: जी जी ओके थैंक यू
1: हैव अ नाइस टाइम बाय बाय बाय बाय। सो ए सन जी दिल्ली तो आराधना जी हुनी जेड़े खूबसूरत गाने सुना के गए ने ते दोस्तो इथे ही साडा अज दा प्रोग्राम जेड़ा ओ खत्म हुंदा ते अगले हफ्ते सैटरडे संडे फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे मेरी तरफों देशां विदेशां दे विच प्रवास रेडियो सुन रहे सारे सज्जणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्कार एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल।

0: चतुरा घोड़ा ये क्या रहा चतुरा एक पेरा है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके चिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

से छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपटे ना कभी चांद तारा।

0: बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, जले तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, बुझे तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं।
1: वाह।
0: वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं।
1: बहुत बहुत बहुत।
0: ये खोई खोई नजर कभी रहे, कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर।
1: उधर।
0: ये खोई खोई नजर कभी तो होगी इधर या सदा रहेगी उधर। उधर तो एक जल सुलगता हुआ है वीराना, मगर इधर तो बहारों में बाग जलते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत।
0: जो अश्क पी भी लिए, जो होंठ सी भी लिए, जो तुम्हारी राह चले, कुछ अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो। कुछ आज अपनी सुनाओ कुछ आज मेरी सुनो। खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं।
1: वाह वाह। खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं। वाह।
0: वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। ये फिल्म नूर जहारा फिल्म द
1: जहारा।
0: हाँ जी।
1: अच्छा।
0: और मदन मोहन जी का म्यूजिक है जहाँ। अच्छा। जिन्हें मैं सब तो पहले गीत सुनाया था आपकी नजरों ने।
1: वंडरफुल जी, मतलब की फिल्म इंडस्ट्री क्या बात ने, जेडियां मेनू खास करके जेडे 90 दे 70 दे इथे दे दे गाने ना 30 साल दे विच विच जेडे हन कमाल दे गाने। ए नहीं भी अज भी चलो कोई कोई गाना वधिया मेनू लगदा, लेकिन पिछले सारे ही सोहने लगदे ने गाने।
0: पिछले सर तुसी गीत अगर तुहानू नींद नहीं आ रही ना, पुराने गीत तुसी लगा के सो जाओ तो तुहानू इवें लगेगा जिवें ओ तुहाडे लई लिखे गए ने।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: जज्बात ने।
1: हाँ जी हाँ जी, नो डाउट।
0: कोई भी गीत तुसी सुनोगे ओ हर व्यक्ति नु ए लगदा ए मेरे लिए लिखा गया, ए मेरे जज्बात ने।
1: जी जी आराधना जी, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसी इन्नियां सोहणियां रौनकां लाईयां, गाने सुनाए।
0: थैंक यू।
1: मैं तुहाडे नाल इक शेयर करांगा
0: जी।
1: नज़म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने।
0: क्या बात है।
1: तुसी कहन डे हो ना कि जेड़े तुसी सुनोगे तो एवं लगेगा कि तरह मेरे वास्ते गीत लिखा गया है।
0: जी हां जी।
1: ए नज़म किसे शायर दी है, अल्फाज मेरे ही मेरे ने, दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है, जिंदे रहो।
1: दुहाई मेरी ही मेरी है, जख्म तेरे ही तेरे ने, ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है सर।
1: ए हट हुसन दी तेरी है, मेरे फेरे ही फेरे ने, बेरुखी दी बारिश सजना बंद कर दे, इस जग विच दुख बथेरे ने, बेरुखी दी बारिश बंद कर दे। ऑलरेडी दुख बड़े ने, उतो तुही भी दुख देन दे हो।
0: नहीं मैं तो आप जी नु ये कहांगी कि हुण आप जी रेडियो तो खाली जदों हुण ते एक सोहना जिहा पैग बना लियो।
1: नहीं ये तू अर्ली है जी, अर्ली है, सौन लगा। अच्छा। इस वे मैडम जी 5 बजे ने साडे जर्मन दे विच।
0: अच्छा जी। अच्छा।
1: धुप लगी है।
0: ओके ओके।
1: अजे मैं अपने गार्डन च काम करना, बूटे लाने ने, बहुत सोहने फुला।
0: अच्छा जी।
1: हां जी हां जी।
0: गुड गुड, वेरी गुड।
1: ते मेरिया शुभ इच्छावां तुहाडे नाल, तंदुरुस्त रहो, जीवंदे वसदे रहो।
0: थैंक यू सो मच सर। और सारे प्रवास रेडियो के श्रोतावां नूं शाम दी सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
1: थैंक यू जी। थैंक यू।
0: और बस आपां प्रवास रेडियो नाल इसे तरह प्यार सादी मोहब्बत
1: बनी रहे। बहुत बहुत मेहरबानी।
0: बाजवा साहब नूं बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी। साडे वल्लों नूं तुहानूं प्यार भरी सत श्री अकाल। साडा भी प्यार उन्ना ही बरकरार, बल्कि दहां नाल जर्ब दे के। ठीक है
0: जी। जी जी। थैंक यू सर।
1: हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय। बाय बाय। सो ए सन जी दिल्ली तो आराधना जी हुणी, जेडे खूबसूरत गाने सुना के गए ने। ते दोस्तो इथे ही साडा अज दा प्रोग्राम जेड़ा ओ खत्म हुंदा है। ते अगले हफ्ते सचडे संडे फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर होवांगे। मेरी तरफों देशां विदेशां दे विच प्रवास रेडियो सुन रहे सारे सज्जणां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।

लबा के हाथ से ले सुहादी सोच के पढ़ू पाऊंगा ते खरिया खरिया सुनाऊंगा।

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो योर ओन रेडियो स्टेशन एक्सपोज योरसेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉचिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑन यू फॉर

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही होने लिया कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हाल बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना वो मुकेश पागलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा आप
2: तो
0: मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू